0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-670, मोबाइल नम्बर 9846656।

0: सरसफाई, घरायसी सरसफाई तथा वातावरणीय सरसफाईमा समेत ध्यान दिने गरौं। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गोर्खा।
1: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।

0: तो कब करेगी शादी?
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
0: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं कि तू क्या चीज है।
2: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।
3: तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए।

0: पैसे देखना बंद कर, तुझे नहीं मिलने वाली वो।
1: एक दिन यहाँ पे सर रखेगी और कहेगी, हेलो फ्यूचर,
0: नो चांस, शी लाइक्स हॉट कार्स एंड बैड बॉयज, तू क्वालिफाई नहीं होता।
1: इवन आई कैन बी अ बैड बॉय, ओके?
0: या।

0: कट की धड़कन कैसी होती है सुन रही थी। ड्यूटी पे सोने के लिए 2 हफ्ते का सस्पेंशन और 2 हफ्ते का पे कट।
1: हेलो, नाउ दैट यू जॉबलेस, हाउ अबाउट डिनर एंड डांस टुनाइट?
2: Is that a trick question?
1: No. I mean, I like bad boys who dance. So...
2: Yes, yes. Yes, yes. Yes.
1: Okay, see you.
2: Yes, yes.
1: Hey! एड्रेस नहीं पूछोगे?

0: गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का

0: नगो
1: यमति डाडामा
0: आउला अब मेरो घर लिक्यौ हौ
2: जाज त मिसो भोलि हाम्रो लिक्न पर्छ
0: ल ल ल
3: हेलो त्यो पोतिका
0: होइन
3: घर पोत्न लगाए भन्न सक्दैनौ यति पोतेर सकाएर मेलामा जाऊ है त

0: वॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी युवा सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान कर सकते हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त
2: करदम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगर पालिका छ।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: बडल्ती 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजु भाई तथा दीदी बहनी युवाले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुस् भन्ने हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़।
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभचिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजु भाई तथा दीदी बहनी योचारले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस् भन्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज़ गोरखा नगरपालिका छ।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजु भाई तथा दीदी बहनी युताले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस् भन्ने हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: टॉयस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज गोरखा नगरपालिका छ।